0: The news just coming in, the leader of the opposition in the Lok Sabha, along with a pellet gun victim, is sitting on a dharna outside the senior corps office. At Parliament Street, it is reported that the police have refused to file an FIR. In the case of the man who was allegedly hit with pellet guns during the student protest at Jantar Mantar. Earlier, Rahul Gandhi had written to Union Home Minister Amit Shah, demanding accountability for the barbaric assault on peacefully protesting students, and asked whether he approved the use of lethal force, including pellet guns, against the youth. Now, remember in July, Gandhi presented before the media Sahil Lochab, the 19-year-old who was allegedly shot with a pellet gun by security personnel during the July 20th march.
1: आँख में तीन छर्रे हैं, आँख इनकी खो गई है, उस आँख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं, जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सब ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आप दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, दो मिनट आप आइए बोलिए।

0: ये कितने दिन से आप घूम रही हैं?
1: 13 अगस्त
0: से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो, पुलिस स्टेशन में जाइए, हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस, दे सेड कि जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है तो आप कनॉट प्लेस जाइए, हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहां गए। वहां वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द थ्रोट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ,
0: और जब आपने उनसे कहा तो फिर उनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है।
1: और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कलेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है DCP क्राइम ब्रांच के पास, नहीं आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले, उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही, पुलिस स्टेशन एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम व्हिच इज द पुलिस। उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं, अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस चप्पा लगा, रिसीविंग मिला, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड, वी हैव एन MLC कॉपी हार्डिंग व्हिच सेज पंक्चर्ड वुंड्स एंड ओजिंग ब्लड ओजिंग आउट। ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है, दिस इज दैट देयर आर पंक्चर्ड वुंड्स,
0: दिखाइए
2: कमर दो
3: सर, दिस सर
0: आई रीड इट आउट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट बीइंग हिट बाय पैलेट्स फायर्ड बाय ऑफिसर नियर जंतर मंतर दिल्ली ऑन 27-26 at about 3 PM, following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे details दिए हैं और यहाँ लिखा है multiple puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm, present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं, इनकी आंख में 3 है, दिखाइए इनकी आंख से, इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे, DTR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस, आइए ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा।
4: दादा पीछे कर लो यार, थोड़ा फ्रेम में आ रहा है।
5: 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई उसके पास ही जो उसका थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा, फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया हंडाया कुछ नहीं, वहाँ पे भी मैं गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम
6: करेंगे।
7: Well, that was the Rahul who was demanding that an FIR be filed in the case of the man who was allegedly hit with protests at Jantar Mantar in New Delhi. Moving on, U.S. Navy is repositioning its forces amid the ongoing conflict in West Asia. The USS George Washington has arrived in the Arabian Sea, replacing the USS Abraham Lincoln, which is heading home after more than 250 days at sea. The USS Gerald R. Ford also left the region earlier this year, with 2 U.S. warships withdrawn and a new one deployed to West Asia. Questions are now being raised over whether the U.S. Navy is facing a strategic setback in the region. Now, according to U.S. Central Command, the George Washington's arrival is part of a scheduled deployment. Its arrival comes after growing concerns over the conditions aboard the Lincoln, which has been at sea for an